0: कैमरा रोलिंग
1: सीन 24 शूट 3 एक्शन।
2: तो या फेडर लवेस्की प्रिमायो वेकलेग मिखाइल मकारे आइस बुक चैलेंज।
3: Bonjour, je reviens tout juste de deux journées de guidage très particulières. Dans le cadre de mon service de guide, j'offre un service qui s'appelle « Je découvre ».
4: 肯定要三百以上，
5: 对，要三百以上。
4: 这些人里面肯定有打三百，
5: 对，
4: 北大好几个打300多，王富，
5: 哦对，王富他妹妹有来。